गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

0: द्वारा दिनांक 18 जून 1973 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
1: भूमिका शंकराचार्य के एक शिष्य विरचित श्लोक के आधार पर भगवान बाबा ने इस प्रवचन में ईश्वर के सगुण स्वरूप की महत्ता को निरूपित करते हुए उसमें निहित एकता से साधकों को अवगत होने का उपदेश दिया है। स्वामी ने पसलनाथ और विहंग वाहन शब्दों के माध्यम द्वारा ईश्वरीय एकता को बड़े ही सुबोध ढंग से स्पष्ट किया है। स्वामी का कथन है कि लौकिक विषयों के आकर्षण की बदहजमी के शिकार साधक के लिए निर्मल चित्त से की जाने वाली साधना ही औषधि है। स्वामी ने विशेषतः इस प्रवचन में सत्संग की महत्ता को उजागर करते हुए उसे अत्यंत उत्तम साधना मार्ग निरूपित किया है।

बेसुमार बेअंत बढ़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिरसै परम्या देरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग। तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा। आयो दुख हरण शरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा कहो पए गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ। दिसै

कृपा ठाकुर दया मया कृपा ठाकुर की सही संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवां गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानके अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवां कोई जान।

नाद कुरंग कह बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सासिया रद नै बिसरंत नाम यचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक नाथी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ लै जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदोत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीमना सक्का पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया